आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ ताईं खां समय तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, विछोड़ कुझु हिन तरह आहे। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत कोराम साहिब जन जी मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ तव्हां अॼु प्रोग्राम अदबी गुलशन में जनाब बी के अजवाणी खां शेरो शायरी जो इस्म ॿुधंदा। ख़ास ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में ब्रॉडकास्ट कयूं वेंदियूं। या त असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया, या छो त भगत कोराम साहिब खे ॿुधूं।

सितम जा दाग कोई जान ते ॾिसे न ॾिसे, ज़ुल्म ऐं सितम जा दाग कोई जान ते ॾिसे न ॾिसे, सीने अंदर साफ़ घाव गहरा नज़र था अचनि नवा नवा। आए ख़ामोश साईं राज़ शिकायत न कंदो क़यामत तोणी, आए ख़ामोश साईं राज़ शिकायत न कंदो क़यामत तोणी, वरन दिल में बगावत जा ख्याल था उथन नवा नवा। मर्द मौला जो मंसूर हुयो, सालक के सौदाई सरूर हुओ, इन आलक अनल हक जो ऐलान नाहे जुर्म, खुद शनास बिल्कुल बेकसूर हुयो, सूलिय चढ़ियो कई न शिकायत, खामोशीअ ते हुन खे गुरूर हुयो, वहदत में वाकई आ खुमार गज़ब जो का मुद्दत मस्त मखमूर हुयो, आ हीअ बख़्शीश रुगो आरफन ते शाही निज़ाम में को दस्तूर हुयो, अर्श ते उॾामे थो रिंद छो हो, अर्श ते उॾामे थो रिंद छो हो, जाम में नशो को ज़रूर हुयो, अची न सघियो महबूब अलाए छो, विच वेरनि शायदि मजबूर हुयो, विछोड़ो आहे लाज़िम मोहबत में, अलाह खे ईअं मंज़ूर हुयो।

लाल सनम जो चिटो दाग आ नक्श कदम जो हैरत में हितरे हर दम फेरियूं पाया रिम झिम झुमरियूं पाया गैर वैर जो भगो सब भरम मस्त जो वियो लही हया शरम वाटुन ते वेही वाह वाह वज करियूं वजाया रिम झिम झुमरियूं पाया रहमत जो तो

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के

उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी की सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में

है समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। बाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत को व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़िया

0: क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवाड़ी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा

बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमरीका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फीथिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क के जेल 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोषसिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय

बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर 3:47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीत कर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

समय के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौड़ तमस्तर खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के कायम की तजवीज है। यह बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइशों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना

में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रूपये से ज्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्कियात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख

0: येलो अलर्ट जारी किया गया है। भदक, कालाहांडी और नबरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: केरलम के तीन जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शिमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि आठ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को केरलम में

0: जबकि बासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने लीक पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के सीबीआई के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिले सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तिजाम है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। गुजरे एमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रावण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और वर्ल्ड मास्टर खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा

0: लगी हुई है। इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है। इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
1: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन

0: में भी यही मूल मंत्र है। देखिए प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू यह है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है, समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फोमेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेज की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते हैं।
1: तो एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?
0: एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे मैनेजर को

0: लीडर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को सबसे बड़ी बात है कि वो इनोवेटिव नई सोच विकसित करे, लीक से हटके करे।
1: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें।
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार

0: ये कल्चर आ रहा है और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं और सरकार कर रही है।
1: धर्मेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज कहते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज

0: उसी को हमने यहाँ पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांव की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई और वो आर डूइंग ग्रेट।
1: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए?
0: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती है, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी जब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकता है।
1: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन की जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है?
0: एआई को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल

0: रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है,
1: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं,
0: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
1: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
0: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है। देखिए, प्लेयर्स अगर अच्छा

0: है और मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
1: प्रबंधन केवल एक सामाजिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि किसी भी संगठन की सफलता का आधार होता है और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है। प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला और प्रबंधन के विषय में बहुत

छत्तीस मिनट पर प्रोग्राम पेश किया जाएगा। चर्चा का विषय है 11 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। प्रोग्राम होगा मेरी पसंद। साढ़े 11 बजे हम पेश करेंगे जनाब आर के शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा पर्दे के पीछे। 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से आप सुन सकेंगे फिल्मी दुगानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। इस दौरान 12

0: सुभाग प्रोग्राम में शामिल भी आप समाप्त फरमा रहे थे इंद्र नारायण से भजन। इसके साथ ही आज का सुबहगाही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम में भी 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: Today is International Day of Friendship. Friendship is one of life's greatest treasures. A bond built on trust, understanding and mutual respect that enriches our journey and strengthens our communities. The International Day of Friendship was

0: Yes, listeners, we are paying tributes to Dr. Muthu Lakshmi Reddy. Today is her birth anniversary.
1: जी बिल्कुल, भारत की पहली महिला विधायक रही, प्रथम महिला सर्जन रही और एक महान समाज सुधारक भी रही है. इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में दाखिला लिया और इस विभाग में दाखिला लेने वाली वो पहली भारतीय छात्रा भी बनी. इन्होंने सर्जरी में गोल्ड मेडल हासिल किया. देवदासी प्रथा के उन्मूलन और बाल विवाह को रोकने के लिए ऐतिहासिक कानून बनवाने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई. और श्रोताओं, आज जाने माने गायक सोनू निगम का भी जन्मदिन है. इन्होंने कन्नड़, उड़िया, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी और छत्तीसगढ़ी में भी गाने गाए हैं.

और नाजर हुसैन जैसे एक्ट्रेस के अपोजिट नजर आई। सुलोचना ने अपने करियर में कई मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस की मां या दादी की भूमिका निभाई। इसके अलावा पत्नी की भूमिका में उन्होंने अहम किरदार निभाया। 1960 और 70 की अगर बात की जाए तो देवानंद, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स की वो मां के रोल में नजर आई। 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने सुलोचना को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2004 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इसके अलावा दिल्ली दूर नहीं न्याय की तलाश में उनकी एक यात्रा की कहानी थी जो 1951 में आई।

खत्म करे। अन्य अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान जेरी की कार्रवाई कल सुबह ग्यारह बजे तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवजा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन की तरह कानूनी तहफ्फुज़ हासिल हो जाएगा। इस मुजवजा कानून के जरिए कौमी ताजीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बाकी

जी आर डी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रही। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि ये कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इक्तिसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम रादारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात का शिकार है। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली कौंसिलों और सनअती अंजुमनों के साथ मीटिंग की जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निजाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। जनाब गोयल ने कहा कि इस तरह स्टार्टअप जदीद

0: चांदी का तमगा हासिल किया है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अखबार जर्री पर मबनी प्रोग्राम समाप्त फरमाइए। शमे फरोजा।
2: जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का राज बुलंद हिम्मती में मुजमिर है। एक बाहिम्मत और हौसला मंद शख्स कामिल एतमाद और यकीन के तुफैल मुश्किलात पर काबू पाकर कामयाबी हासिल करता है। मशहूर मुफक्किर विस्टर का कौल है, हिम्मत आंखें बंद करके खतरात को देखने का नाम नहीं बल्कि मुकाबला करके उन पर गालिब आने का नाम है। ड्रेडन हिम्मत के हवाले से लिखते हैं कि हिम्मत का ताल्लुक दिल के साथ है, यह आला किरदार की बुनियाद है। एक मुफक्किर ने क्या खूब कहा है, करेज इन डेंजर इज हाफ द बैटल। खतरे के वक्त हिम्मत का मुजाहरा निसफ लड़ाई या मुकाबले के बराबर है। व्हाइट हैट का कौल है, हिम्मत का मतलब ताकत का वहशियाना इस्तेमाल नहीं बल्कि सच्चाई और नेकी का सहारा लेकर मुकाबला करना। कार्लटन लिखते हैं, जिस्मानी और अखलाकी हिम्मत अजीम शख्स

खूबसूरत प्रोग्राम में सामने में आप सुन रहे थे सरला टंडन और चंद्रकांता के गाए सावन के गीत। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशी खिदमत प्रोग्राम चर्चा का विषय है। आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मानसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था

सीजन का मानसून सीजन जैसा जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल और क्वांटिटी होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड कर देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक

0: मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी ऐसा ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है। तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा फिर डाटा एसिमिलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सारे कम्बाइंड अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यावहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, तब इस तरह की कई संभावना

0: यस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
1: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे, जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ये है।

0: घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें।
1: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं, वो भी कई बार तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ होने की भी संभावना है।

0: मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है। तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारे जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने अभी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है, वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटे पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटे के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटे पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है, काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, या आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क, राडार जो इंटरसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गाँव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में है तो किसी टीन शीट के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में है, वो सुरक्षित है। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स्ट के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग, तो वो पेड़ तले ना जाए। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में

तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतने कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे जुलाई का।

0: कैसे फंसे हैं, ऊपर है या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसे हैं, कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान। तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशन को हमें देखना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है, फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है, तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाए, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूदशाव की संभावना है, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारे मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान

0: वैसे ही मुझे बुद्धू का रोल दिया।
1: अरे तुम्हारा तो कैरेक्टर रोल है, अगर ठीक से कर गए तो सारे ड्रामे में लोग तुम्हें याद रखेंगे।
0: अच्छा तो फिर मेरी रिहर्सल करवाइए।
1: ठीक है चलो शुरू करो।
0: शुरू करो।
2: बाबूजी नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: क्या लाला रामनाथ आते?
1: हाँ हाँ कहो क्या बात है।
2: पहले आपके पांव छू लूं जी, फिर बात करें।
1: ये क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा?
2: हीरा।

0: शाबाश बेटा शाबाश, तुम तो बिल्कुल सच बोलते हो। और क्या कहा था तुम्हारे पिताजी?
1: जब आपका खत मिला ना तो पिताजी माताजी से कहने लगे, अगर ये मुर्गा फंस जाए तो भागी खुल जाए।
0: अच्छा अच्छा, तो तुम मुर्गा फंसाने आए हो?
1: मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया।
0: हाँ,
1: आपने किसी मुर्गे की बात लिखी थी?
0: जरूर लिखी होगी। ऐसे
1: अच्छा तो सुनिए, पहले ये तो बता दीजिए आपने रेखा बहन जी के बारे में।

0: मुसलमान बीवी बड़ी किस्मत से मिलती है। अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो भाई?
1: तुम अपने ड्रामे का पार्ट याद करो, मुझे बहुत काम है। हाँ।
0: शीला यकीन करो, मैं ये ड्रामे का पार्ट याद नहीं कर रहा, मैं ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तभी दिल से कह रहा हूँ। सचमुच तुम कितनी समझदार हो।
1: कल तो तुमने कहा था कि किस बेवकूफ से पाला पड़ गया।
0: अरे वो तो मेरी बेवकूफी थी, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ, नालायक हूँ।
1: बस बस बस बस, बस इतना ही काफी है। ये रही कलम और दवार, आज इतना ही लिखो वरना तुम भूल जाओगे कि तुम क्या हो।
0: शीला मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं
1: अच्छा अच्छा अब बातें न बनाओ, कपड़े बदल कर खाना खा।
0: मैं तो भगवान और तुम्हारे पिताजी का रात दिन शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे तुम जैसी समझदार, होशियार, वफादार बीवी अता की। मैं सच कहता हूँ
1: मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम्हारे ड्रामे के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे ड्रामे का खर्च टिकटों से पूरा नहीं होता तो क्या डॉक्टर ने लिख दिया है कि ड्रामा खेलो?
0: शीला मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं सच कहता हूँ अगर ये ड्रामा खेला गया तो लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे।
1: तो क्या सबको मुफ्त दिखाओगे?
0: मेरा मतलब है कि
1: एक बात और सुन लो, मुझे ड्रामो में लड़कियों के कंधे पर हाथ रखना और उनसे हाथ मिलाना कतई पसंद नहीं।
0: तुम तो बहुत ही नैरो माइंडेड हो। अरे वो मेरी बीवी है।
1: क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है? वो बेहया बेशरम, वो तुम्हारी बीवी है तो मैं कौन हूँ?
0: तुम समझदार हो।

0: पर नहीं जचती। उसके पिचके हुए कान, पतली नाक और मोटे होंठों ने तो उसे बिल्कुल कार्टून बना दिया है।
1: ओफो, अब ये बेवक्त न जाने कौन हमारा
2: अखबार वाला लगता है सुबह भी अपने पैसे लेने आया था।
0: तुम इससे कह दो आपके सरकारी नोटों के एवज में हमारे ड्रामे की टिकटें ले ले।
3: अरे बाबू,
0: अरे ये तो कोई और लगता है, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। तुम कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ।
2: अच्छा,
3: बहन जी राम राम।
2: राम राम।
3: क्या कहते हैं, अनिल बाबू घर पर हैं?
2: जी नहीं, वो तो
3: माफ कीजिए, मेरा मतलब है अनिल बाबू जो मशहूर डायरेक्टर हैं, यहीं रहते हैं?
2: जी हाँ, रहते तो यहीं हैं, पर
3: जी वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्या कहते हैं, बेमिसाल अदाकार हैं।

0: पढ़ना चाहे। ड्रामा तो तुमने पढ़ा ही है ना?
1: हाँ, एक बार पढ़ा तो था।
0: तो बस ठीक है। देखो तुम रेखा का पार्ट कर रही हो।
1: अच्छा।
0: ये लो ड्रामा
1: लो।
0: तुम हाँ यहाँ से शुरू करो। हाँ हाँ शाबाश, बोलो बोलो।
1: राकेश, मैं तो तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ, इसे कहीं खो न देना।
0: शाबाश, बस जरा जोर से और देखो दिल पर हाथ रखकर। हाँ,
1: अच्छा हाँ। मैं तो तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ, इसे कहीं खो न देना।
0: ओ, दिल दाएं तरफ नहीं बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ हाथ रखो। हाँ, हाँ।
1: जब दिल दे दिया तो दाएं तरफ रहा ना बाएं तरफ।
0: अच्छा अच्छा छोड़ो बात, आगे पढ़ो आगे पढ़ो।
1: क्या मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ?
0: हाँ पूछो पूछो।
1: क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो?
0: अरे ये तो तुम इस तरह कह रहे हो जैसे मुझे 10 का नोट देकर हिसाब मांगती हो।
1: तो तुम ही बोलकर दिखाओ ना।
0: क्या क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरा मतलब है जरा शर्मा कर, गर्दन उठा कर, नजरें झुका कर।
1: मुझसे नहीं होगा।
0: नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। अच्छा आगे चलते हैं।
1: हाँ।
0: रेखा तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी चाह।

0: 3 घंटे पर वो हम लोग तो बाहर जा रहे हैं।
1: अब रात को कहाँ जाएंगे?
0: जो वो कुछ जरूरी काम है।
1: ऐसा ही क्या जरूरी काम है भाई?
0: दरअसल वो हम लोगों का एक दोस्त के घर खाना है।
1: हाँ जी जी। तो घंटे दो घंटे में वापस आ जाओगे?
0: जी
1: तुम वाओ मैं यहीं बैठा
0: जी। वो हम लोग रात को वही रहेंगे।
1: हाँ जी तब तो भाई हम चलते हैं। हाँ पास जरूर भिजवा देना।
0: जी जी जी।
1: करना
0: जी
1: कोई पास बेकार नहीं जाएगा। और एक काम बच गया
0: जी
1: तो अगले दिन वापस कर देना
0: जी।
1: अच्छा नमस्ते।
0: नमस्ते। ओह बड़ी मुश्किल से पढ़ा था जी। ऐसे लोग ना खुद कोई काम करते हैं ना किसी और को करने देते हैं।
1: शीला शीला
2: अभी आई।
0: ओह अब इस सीन की रिहर्सल करवाता हूँ।
2: चला गया
0: दफा हो गया। शीला देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है।

0: तुम्हारा डायलॉग नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा तुम सिर्फ इतना कह दो कि चलाओ गोली, मैं मौत से नहीं डरती।
1: मैं मौत से नहीं डरती, चलाओ गोली।
0: मैं कहता हूँ चलाओ, चली जाओ वरना खून हो जाएगा। खून?
2: कैसा खून? किसका खून? कैसा खून?
0: जी
2: आप दूसरे कमरे में चली जाइए,
0: समझते क्यों नहीं साहब बातें,
2: अरे हम आपके पड़ोसी हैं,
0: मुझे छोड़िए, मैं कहता हूँ आप छोड़िए मुझे,
2: हम ये जुल्म अपने मोहल्ले में नहीं होने देंगे।
0: साहब आप लोगों को कुछ मालूम नहीं, बस यूं ही बोलते चले जाते
2: हैं। आज कुछ भी हो, बीबी को मारना तो नहीं चाहिए,
0: ये कानूनन जुर्म है,
2: लेकिन अगर मोहल्ले में कोई कत्ल हो जाए तो हमें भी गवाही देनी पड़े,
0: पुलिस हमें भी परेशान करेगी। मैं कहता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
2: अरे आखिरी माजरा क्या
0: है? आप लोग तो यूं ही डर गए,
2: सामने की बात ही है।
0: मेरा दिल तो अभी तक धक धक।

0: आप एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं, आप तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि बस क्या कहूँ, उस पर आपकी ये पर्सनालिटी लोग देखते ही रह जाते हैं।
1: छोटी तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। तो ये है मीना जिसके लिए तुम कह रहे थे कि बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे इंजन सीटी मार रहा है। नॉनसेंस। ए मैम साहब, गाली देना अपने घर वालों को, मैंने तुम जैसी बहुत देखी है।
0: ओ शीला शीला, मीना जी मेरे जी, इनका पुराना

भारत के बरामदाती इको निजाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मुसाबका आदाई को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मुसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निजाम की तामीर के हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नजरिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि इख्तरा स्टार्टअप्स जदीद टेक्नोलॉजी एमएसएमईज और आलमी सतह के मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। कल नई दिल्ली में 22वें जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की तरफ बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मयार इख्तरा और मुकाबला आरई के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मकाम हासिल हो। वजीर मौसूफ ने इख्तरा मीज 1,00,000 करोड़ रूपये की तहकीको तरक्की और इख्तराई फंड इंडिया एआई मिशन और दूसरे सेमीकंडक्टर मिशन को फरोग देने के लिए बहुत सी पहलकदमियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये पहलकदमियां मुल्क के इख्तराई इको निजाम को

बात रूस के सरकारी मीडिया ने बताई है। एफएसबी ने इल्जाम लगाया कि टेलीग्राम ने उन चैनल्स और चैट्स को नहीं हटाया जिन्हें यूक्रेन के खुफिया इदारे बेहतर तौर पर रूस के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हुकाम से यह दावा भी किया है कि टेलीग्राम की डेटिंग सर्विस की रूसी शहरियों की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए भर्ती करने की गरज से इस्तेमाल किया जा रहा था। एफएसबी ने बताया कि टेलीग्राम के बानी की गिरफ्तारी के

भा अनितग इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाजों में, मुस्कुरा थी राजेश रोशन। मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की अगली

तुलसीदास हिन्दुस्तान के अजीम फनकारों में शुमार होते हैं। वो सन 1539 में आगरा के करीब एक गांव राजापुर में पैदा हुए। कहा जाता है कि तुलसीदास जी के पैदा होते ही उनके मुंह से राम राम की आवाज निकली थी, इसी वजह से उनका नाम राम बोला पड़ गया था। तुलसीदास जी के वालदेन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उन्हें बाबा नारायण दास नाम के एक साधु ने परवरिश किया।

जा सकती है जो ऊपर की खिड़की से नीचे तक लटकी हुई थी। इस रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ गए। इत्तेफाक ये था कि उनकी बीवी ऊपर के उसी कमरे में सो रही थी जिसमें वो रस्सी के सहारे दाखिल हुए थे। तुलसीदास ऊपर पहुंचे और बीवी की आंख खुल गई। ऐसी भयानक तूफानी रात में वो शौहर को देखकर हैरत ज़दा रह गई और उनसे पूछा कि किस तरह अचानक ऐसी भयानक रात में ऊपर के कमरे तक पहुंचे। तुलसीदास जी ने तमाम अहवाल बताया और उस रस्सी का जिक्र किया जो खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। बीवी ने हैरत के साथ रोशनी में रस्सी को देखा तो वो एक अश्तहा था जो ऊपर से नीचे तक लटका हुआ था। इस अजीब वाकये पर दोनों को हैरत हुई, लेकिन तुलसीदास की बीवी ने अपने शौहर को समझाया

सिक्योरिटी सर्विस FSB ने टेलीग्राम के बानी पावेल ध्रुव पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए सहूलत पैदा करने का इल्जाम आयद किया है। और कनाडा के शहर ओंटारियो में भारत की मर्दों की टीम स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तफसील से कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहरे अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल के अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% इजाफे का इंदिराज हुआ है। JRD टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात मुस्तहकम रही। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि ये कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क के मजबूत इक्तसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात का शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निजाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना

की मुलाकात होती है अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड सनी से। सनी बेपरवाह, जुनूनी और सिमरन की तन्हाई को वो भांप लेता है। सनी की आंखें और उसकी बातें सिमरन को उस अतीत में खींच ले जाती हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जुनून था। बारिश की बूंदों के बीच जब ये दोनों करीब आते हैं तो बॉलीवुड को मिलता है एक सबसे रोमांटिक और प्यारा गाना, जिसे गाया था कुणाल गांजावाला ने। तो आइए इस गाने को सुनते हैं जिसने कुणाल को स्टार बना दिया था।

श्रोताओं भी अपने गीत सुना और भीगे होते रहे। इस गीत को सुनना और सुनने के बाद जो महसूस होता है वो कुछ अलग ही है। दोस्तों, हर गलत कदम की एक कीमत होती है। कहानी में सिमरन और सनी का यह अफेयर सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहता, ये बन जाता है एक खतरनाक पागलपन। सिमरन को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है और अपने पति को धोखा दे रही है। वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, पर वहीं सनी है। सनी आसानी से उसे छोड़ने वालों में से नहीं था। सनी का प्यार अब सनक बन चुका था। वो सिमरन को ब्लैकमेल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुधीर को अपनी पत्नी

पहुंचता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है और गुस्से में आकर सुधीर सनी के सर पर भारी चीज से वार कर देता है। सनी जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यह सब देखकर सुधीर डर जाता है। वो सनी की बॉडी को अपनी कार के डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह पर उसे दफना देता है। वहीं दूसरी तरफ सिमरन को लगता है कि सनी उसे छोड़कर

श्रोताओं, अभी आपने खूबसूरत गीत सुना और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मर्डर की। महेश भट्ट और अनुराग बसु ने मिलकर 2004 में जो थ्रिलर फिल्म बनाई उसने इमरान हाशमी को बॉलीवुड का उभरता सितारा बना दिया। वहीं मलका शेरावत उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बनकर उभरी और इस फिल्म के संगीतकार ने कई सारी बुलंदियां छुई। आज भी जब बारिश होती है

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर 1:40 होने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार,

0: करने के लिए तैयार है, विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: श्री नड्डा ने सभा में सूचित किया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर बाद 2 बजे जनता परीक्षा में अनुचित साधना की रोकथाम शोध बिल 2026 पेश करेंगे। श्री नड्डा ने सभा में रूकावट पाने विरोधी धिर के विहार अति भूमिका की निखेधी की थी। इस तो बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस समेत विरोधी पार्टियों ने सभा में वॉकआउट किया। नीट परीक्षा के मुद्दे से विद्यार्थियों के विरोध मुजहरे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से विरोधी धिर के हंगामे कारण लोकसभा दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज सवेरे 11 बजे जिवे ही सभा जुड़ी तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पैरा एथलीट दिलीप गावित 23वीं राष्ट्रमंडल खेडा विच शानदार कारगुजारी सोने का तमगा

0: हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
1: शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की गोली बारूद की तफसीलात महफूज रखने को कहा है। अदालत आलिया ने उन अर्जदाश्तों में एक पर सवाल उठाया जिसमें अमन कानून की सूरत हाल से निमटते वक्त मेटेलिक पैलेट गन पर मुकम्मल पाबंदी की गुजारिश की गई है। उसने पुलिस तहकीक व तरक्की के ब्यूरो की एडवाइजरी का हवाला दिया और कहा कि पुलिस को गैर मामूली सूरत हाल में पैलेट गन इस्तेमाल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला माल्याबागची और वी मोहना पर मुश्तमिल एक बेंच ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाज के दौरान पैलेट से जख्मी हुए अफराद को इलाज व मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जानिब से 2020 के फसादात के एक मामले को मनसूख किए जाने के खिलाफ चंडीगढ़ की इंतजामिया की एक अर्जी पर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान

0: पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान

उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार

0: न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश

0: को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखा भाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।

0: का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और

0: का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान

भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादो गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली

0: कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आदाब सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी अपने दोस्त और होस्ट रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज मैं लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में हम हर बार ऐसे कलाकार के जीवन, संघर्ष, सफलता और उनके सदाबहार गीतों की खूबसूरत यात्रा आपके सामने लेकर आते हैं, इसने अपने हुनर से करोड़ों दिलों में एक खास जगह बनाई। क्यों? तो आज हम जिस महफिल में सजाने लेकर आए हैं, जिनका नाम हम लेकर आए हैं, कि ऐसी आवाज है जिसने प्यार को ना सुर दिए,

जो आज दुनिया भर में सम्मान के साथ ली जाती है। क्यों, सही कहा ना। तो अब बढ़ते हैं हम अगले गाने की ओर, उनका एक प्यारा सा गीत, रोमांटिक, क्योंकि उनकी आवाज इतनी खूबसूरत है ना कि हर जगह उनकी आवाज दिलों पर राज कर जाती है कुछ इस तरह।

बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं। फारूक अली खान जी का हमें मैसेज सबसे पहले आया, लेकिन जवाब जो सबसे पहले दिया वो हमने बता दिया। फिर हमारे पास आया निसार अली जी का जवाब।

जी हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर। और हम आज बात कर रहे हैं हमारे जिनका आज जन्मदिन है, हमारे प्यारे से सोनू निगम जी। जी हाँ दोस्तों, कई बार किसी गायक की आवाज अभिनेता की पहचान बन जाती है। सोनू निगम की आवाज भी कई सुपरस्टार पर इतनी खूबसूरती से जमी रहती थी कि दर्शकों को इतनी पसंद आती थी कि क्या बताएं। क्या आपको पता है कि एक गाना गाते हुए सिंगर के मुंह से, यानी कि इन्हीं के मुंह से खून निकल आया था? जी हाँ, वो गाना है फिल्म परदेस का, ये दिल दीवाना, जो शाहरुख खान पर फिल्माया गया। हुआ ये कि जब सिंगर गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो पहुंचे तो सुभाष घई ने उनसे कहा कि सोनू ये गाना ना तुम्हें इतने दर्द के साथ गाना है कि तुम्हारे गले से

सुनेंगे तो बिल्कुल डूब जाएंगे, जिस तरह से मैं डूबी। देशभक्ति जज्बा वो अपने हर आवाज के हर लफ्ज में उनके झलकता है और ये गीत अमर बन जाता है।

समीन अदर्स, ये आकाशवाणी है, सपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशियात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं। अब से चंद लगों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

0: करना चाहिए किस तरह से।
1: डॉक्टर सैयद रजा साहब, हम चाहेंगे कि आप इस नजरिए के बारे में क्या सोचते हैं।
2: देखिए, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर हकीकुल्ला साहब का कि उन्होंने पूरी इस गुफ्तगू का एक नहज जो एक पैटर्न जो है शो में एक क्लियर कर दिया
1: जी।
2: उससे गुफ्तगू जो है बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेगी। सबने जैसा कि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि बहुत ही मायूसकुन माहौल है अखलाकी अकदार के ताल्लुक से और हमारा जो तालीमी निजाम उसके ताल्लुक से। देखिए, जो हमारा पूरा तालीमी निजाम है, सिर्फ तालीमी निजाम ही नहीं बल्कि जो पूरी हमारी जिंदगी है, जो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल है, उसमें अखलाकियात का एक बहुत ही अहम किरदार है। और जब तक के हमारे तालीमी निजाम में उन वैल्यूज

0: करने या ना करने का फैसला ले पाते हैं। अखलाकियात की बुनियाद पाकी, ईमानदारी और हकीकत है। जमीर की सही आवाज ही अखलाकियात है। मशहूर मौरख और माहिर तालीम मैकाइवर और पेज के मुताबिक अखलाकियात का मतलब उसूलों के उस निजाम से है जिसके जरिए इंसानी जमीर अच्छे और बुरे का इल्म हासिल करता है।
1: जी
0: दूसरी इस्तेमाल इसके अंदर अकदार की थी। अकदार की तारीफ यह है कि किसी भी चीज या काम की अहमियत को वाजा अकदार के जरिए किया जाता है। साथ ही अकदार का मकसद ये जानना भी होता है कि कौन सा काम अच्छा या खराब है या फिर उस काम को करने के लिए कौन सा तरीकेकार बेहतर रहेगा। मैंने के मुताबिक मुल्क जमाना हालात के जमन में आम मकसदियत ही अकदार बन जाती है। अकदार आदात और मिसालियात हमारे बर्ताव को हिदायत देते हैं। अखलाकी अकदार यानी पूरी जो टर्म है मैं उसे मिलाकर उसकी तारीफ बताता हूँ कि अखलाकी अकदार क्या होता है। अखलाकी अकदार अच्छे और बुरे अमल का

0: जॉब लिंचिंग, जालसाजी, बेईमानी, झूठ, दूसरों की बेइज्जती करना वगैरह अखलाकी अकदार में आई कमी का ही नतीजा है। हमें चाहिए कि अखलाकी अकदार की कदर कीमत को न सिर्फ पहचाने बल्कि उसे अपनी जिंदगी के साथ साथ तालीमी निजाम में भी खास दर्जा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
1: अगला साहब जी वही आ रहे थे, हम चाहेंगे कि आप ये जो हमारा तालीमी निजाम है इसको बेहतर किस तरह हम बना सकते हैं जिसमें अखलाकी अकदार भरपूर हो।
2: देखिए, फिलोसफी के में एक ब्रांच होती थी जिसको एथिक्स कहते हैं
1: जी,
2: और ये एकेडमिशियन जो हमारे पुराने प्लेटो और अरिस्टोटल हैं तो इनके जो मकतब थे एकेडमीज थी उन एकेडमीज में एक

0: कितने काम की वो नजमें जी। तो इस एतबार से जो नजमें जो अदब है हमारा आज का, उस बच्चों के लिए ऐसा अदब भी खत करने की जरूरत है कि जो कि पिछले जो निजाम तालीम था उसको नए तौर पर नई शक्ल में उसे एक मुबद्दल शक्ल में पेश कर सके, आज के जहन को सामने रखकर, आज के वक्त को सामने रखकर।
1: बहुत ही सही अंदाज नजर के तहत अखलाक

अनदेखा फिल्म का ये दुकान आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ਲਗਾ ਰਵਾਂਗੂ ਖਾ ਕੇ ਨਾਗ ਵਾਲ ਲਿਵਗੀ ਲਗਾ ਰਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਤਦੀ ਠਾਣੀ।

दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना माझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है।

प्रबंध करें तो वो उनकी फसलें बची रहती हैं। इसके अलावा सफेद मक्खी की समस्या खास तौर पर बेल वाली सब्जियों में आती है, उसके नियंत्रण के लिए भी उन्हें कदम उठाने जरूरी हैं, चाहे उसमें छिड़काव करना है या फिर आप को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बेल वाली फसलें हैं उनके अंदर पानी की निकासी के साथ साथ पोषण की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि पौधा आपका अच्छे से चले और जो उसके ऊपर फूल लगे हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा फल आपके बन सके। और ज्यादा बात ये भी ध्यान रखनी है एक और कि अगर बारिश नहीं होती है, कई इलाकों में इस समय बारिश नहीं हो रही है, आज भी देखो दिन में कितनी तेज धूप थी, तो उस स्थिति में पानी की व्यवस्था किया जाना भी बहुत जरूरी है। और जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें खास तौर पर जो टपक सिंचाई विधि है उससे ज्यादा अच्छी पानी की बचत होती है और इनसे भरपूर पैदावार मिलती है। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बेल वाली फसलें हैं उनमें अगर पानी ज्यादा आ गया है तो निकासी तुरंत करें, पानी

0: उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सोमवार 5:30 से 6 और रविवार 5:30 से 6 और चैनल होंगे गोल्ड और हमारा FM रेनबो, तो सुन सकते हैं हमारे किसान भाई। और जो तकनीक की हम बात कर रहे हैं तो सुनते हैं कृषि में नई तकनीक और ड्रोन का उपयोग विषय पर डॉक्टर शंकर गोयनका से बात कर रहे हैं प्रताप सिंह भाटी।
2: किसान बहन भाइयों, कृषि के उत्पादन बढ़ाने में जो नई नई तकनीक हमारे किसान भाई अपना रहे हैं उसकी अहम भूमिका है। जैसा कि आप देखते हैं, करते भी हैं, कटाई से लेकर बुआई तक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब खेत में चाहे सब्जी की तुड़ाई की बात हो, चाहे आलू निकालने की बात हो,

0: मनसुख भाई मांडविया जी, उन्होंने 1 अक्टूबर 2021 में अगेन इफको के साथ मिलकर हमने पालीताना भावनगर के पास में हमने ड्रोन का स्प्रे किया जो बहुत ही सराहा गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके बारे में मन की बात में इसका जिक्र किया 7 अक्टूबर को। वहां से ड्रोन की यात्रा भारत में शुरू हुई
1: जी।
0: तो ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यह है सर कि एक एकड़ में छिड़कने के लिए 150 से 200 लीटर पानी लगता है। ड्रोन में खाली 10 लीटर में यह काम होता है क्योंकि जब आप हाथ से छिड़कते हैं तो उसकी जो बूंद निकलती है वो 500 माइक्रोन की है। ड्रोन की बूंद जो खाली 50 से 70 माइक्रोन की है जिससे कि वो छिड़काव करता है। तो सबसे पहली बात पानी बचा। मैं बिहार गया तो वहां का आदमी कहता जी पानी तो फ्री है पर 200 लीटर पानी के लिए मशीन चाहिए, साधन चाहिए, आदमी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो पानी बचा। दूसरी बात है जब आप हाथ से छिड़कते हैं तो 4 से 5 घंटे लगते हैं एक एकड़ को ढंग से छिड़कने में। ड्रोन वो काम 5 से 8 मिनट में करता है। जितना बड़ा क्रॉप है उसके हिसाब से मिनिमम 5 मिनट लगते हैं और मैक्सिमम 8 मिनट लगते हैं
1: जी।
0: तो 5 घंटे का काम 5 मिनट में हुआ। तो पानी बचा, समय बचा, 30% दवाई कम लगती है सर। तो भारत में एवरेज दवाई 2000 से 25000 रुपए की है। यदि 2000 की भी हम दवाई पकड़े तो 600 रुपए पर एकड़ आपकी दवाई बचती है। तो पानी बचा, समय बचा, दवाई बची। तीसरी बात है सर, जब आदमी पैदल से छिड़कता है तो करीब 15 से 18% फसल नष्ट होती है पांव के चलने से, तो बचता है। 8 से 12% प्रोडक्शन ज्यादा आता है क्योंकि इससे पत्ते पत्ते पर छिड़काव होता है। तो ये सारी बातों का फायदा मिला। और सबसे बड़ी बात है सर कि मैंने जैसे कहा कि सांप के काटने से, जीव जंतु के काटने से बचता है। भारत में सर यदि एक आदमी बीमार हुआ तो एक नहीं होता, उसका पूरा परिवार बीमार होता है
1: जी।
0: तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सुपरविजन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा जहां पर कोई भी युवा जो 10वीं पास है
1: जी,
0: वो ड्रोन हमसे ले सकता है। कृषि विमान के अंदर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको हम ड्रोन देते हैं और ड्रोन लेने के लिए पैसा देते हैं जो कि बहुत ही न्यूनतम बैच के ऊपर 6% बैच पे उसको पैसा मिलता है।
1: अच्छा।
0: और वो अपने गांव में जाकर हम उसको काम भी देते हैं। तो वो कृषि विमान ड्रोन ले लेकर अपने गांव में जाए, हम उसको 8 लाख से 12 लाख का काम देते हैं ताकि वो अपने गांव में रहकर अपना जीवन सुखी से व्यापन कर सके।
1: यानी कि एक तरह गांव के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है।

0: जैसे जैसे पौधे को लगेगी वैसे वैसे जो है उसको खाद मिलेगा और पौधे का हेल्थ बेटर होगा, हेल्थ बेटर होगा तो उसका प्रोडक्शन बेटर होगा।
1: डॉक्टर गोविंदा जी, आपने जिक्र किया था युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, तो कुछ युवा जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो ट्रेनिंग में कोई पैसा देना पड़ता है या कितने दिन की ट्रेनिंग है, विस्तार से थोड़ा बताएं।
0: जब आप ड्रोन लेते हैं तो ड्रोन की कॉस्ट में ही आपका ट्रेनिंग का पैसा है।
1: अच्छा,
0: तो आपको ट्रेनिंग के लिए अलग से पैसा नहीं देना है। और ड्रोन भी जो हम दे रहे हैं आपको बहुत उचित मूल्य पे दे रहे हैं। ड्रोन देना कोई खास बात नहीं है सर, मेन बात तो है कि आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है जिसके लिए 10वीं पास जरूरी है। आपने पहले लाइसेंस लिया जिसकी ट्रेनिंग 5 दिन की है, 5 दिन की हम उनको और एडिशनल ट्रेनिंग देते हैं जिसको कि हम प्रो पायलट ट्रेनिंग बोलते हैं या ओईएम ट्रेनिंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर ट्रेनिंग बोलते हैं, ताकि उसको कैसे पार्ट को जोड़ना है, तोड़ना है।

0: मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करने से आपका खर्चा घटेगा ना कि आपका खर्चा बढ़ेगा, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा, समय भी कम लगेगा। तो सब लोगों को टेक्नोलॉजी का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम कृषि विमान ड्रोन बनाते हैं
1: जी,
0: और वागो ग्रीन के माध्यम से काम करते हैं, तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ, आपको जो भी ड्रोन के बारे में भ्रांति है या आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे krishiviman.com के जा सकते हैं। सारे YouTube पे हमने वीडियोज लगा रखे हैं। उसके अलावा हम भारत के अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं
1: जी।
0: और आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम हर सप्ताह

0: एक क्लास लेते हैं जहां के ऊपर अलग अलग राज्य के लोग जुड़ते हैं और हम उनको ड्रोन के बारे में जानकारी देते हैं।
1: डॉक्टर गोयनका जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाई भी भाई खेती में उत्पादन बढ़ाएंगे और भाई जिसने मोबाइल चलाना सीख लिया वो तो पायलट बन ही जाएगा। इसमें कोई दोरा नहीं। डॉक्टर गोयनका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो पायल बहन ये बातचीत भाई सुन रहे थे कृषि में नई तकनीक और ड्रोन का उपयोग, और इसमें डॉक्टर शंकर गोयनका से बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी। और अब भाइयों को क्या सुनवा रहे हो?
3: बिल्कुल करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पाल मिठारिया की आवाज में।
1: भाइयों, कृषि के उत्पादन बढ़ाने में

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में आनंद लेते हैं गीत और गजल के हमारे कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: www.rtv.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद या सील करने की अफवाहों को खारिज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विद्या वाहिनी साइकिल वितरण अभियान का शुभारंभ करेंगी। दिल्ली नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिलखंड तथा ओखला में प्रतिदिन 800 टन क्षमता के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण कल से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। दिल्ली के गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यदि इन मामलों में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उनकी शीघ्र समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस विषय को भविष्य में किसी अतिरिक्त कार्रवाई के बिना समाप्त माना जाएगा। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
2: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है।

0: दिल्ली सरकार कल से छात्राओं के लिए विद्या वाहिनी साइकिल वितरण अभियान शुरू करेगी। इस दौरान कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएंगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रथम चरण में 3000 छात्राओं को विद्या वाहिनी साइकिलें प्रदान करेंगी। इसके बाद अगले एक महीने के भीतर दिल्ली के कुल 1,40,000 छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से साइकिल वितरित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए विद्यालय तक पहुँच को अधिक सुगम बनाना, उनकी नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर

0: निर्माता सोसाइटी SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्वदेशीकरण विषय पर आधारित संकल्प नामक एक कार्यशाला के बाद श्री सेठ ने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए, तो लक्ष्य है हमारा एकेडमिया, हमारा साइंटिस्ट। और कहते हैं ना कि जितना ज्यादा पसीना हम अब कारखानों में बहाएंगे, उतनी सीमा पर बैठे जवान है उसको मदद होगी। तो अब तो इनोवेशन का जमाना है, वो जुड़ रहा है। अब भारत की जो डिफेंस सेक्टर बहुत ताकतवर हुई है।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 12 करोड़ रुपए

400 विश्वविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में आज मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जल जनित बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिला। महापौर प्रवेश वाही ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बाधित की। श्रावण का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने भी श्रावण मास के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण कल से 30 अगस्त तक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन मुकाबला सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच होगा। इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 पुरुष टीमें

0: हैं और आवाज है मोहम्मद अजीज साहब की। आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सी पेशकश।
1: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे

0: सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना

गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की।

हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। ओडिशा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चितवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रात 11 बजे खबरें बर्रे सगीर से नशर होंगी। रात 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में और 11:45 पर प्रोग्राम बज़्म मौसीकी के तहत आप सुनेंगे पंडित हरीश तिवारी की आवाज में राग वृंदावन, सारंग, चपताल और विलंबित। रात 12 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत उस्ताद हाफिज अली खान का सरोद पर बजाया हुआ राग मियां की मल्हार। रात 12:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आखिर शब के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

कोई मनफी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने कौमी राजधानी में नीट यूजी एहतियाती मुजाहरों में शिरकत की थी। अलबत्त जिन लोगों का मुजरिमाना पस मंजर होगा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखिले ने कहा अगर इन मामलों में कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है तो गिरफ्तारियों पर नजरसानी करने गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करने के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। महकमा ने कहा कि दिल्ली सरकार एहतियात में शामिल अफराद के खिलाफ किसी तरह की मजीद मनफी कार्रवाई की तजवीज नहीं रख देती और मामला इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर खत्म समझा जाना चाहिए। उसने मजीद कहा गुज़श्ता रोज शाम 6 बजे तक दिल्ली पुलिस ने एहतियात के सिलसिले में मजमू तौर पर 13 मामला दर्ज किए हैं। बिहार गुजरात मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हल्कों में जमीनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। बिहार में बांकीपुर हल्के गुजरात में मंजालपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हल्के में वोट डाले गए। चुनाव कमीशन के मुताबिक बांकीपुर हल्के में आखिरी खबरें मौसूल होने तक 34% से ज्यादा वोटिंग हुई। मंजालपुर हल्के में 37%

0: in detail here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बहुत के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंक में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,370 पर बंद हुआ। हालांकि विस्तृत बाजारों में गिरावट देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.6% की गिरावट आई।
0: Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. Sensex rose by 274 points, 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped over 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note as rising crude oil prices and escalating tensions in West Asia weighed on investor sentiment. After remaining range-bound for most of the session, both the benchmark indices edged higher during the final hour of trading.

पड़ता है, एफआईआई के रुख पर उस पर प्रभाव पड़ता है। और साथ में तो ये जो वेस्ट एशिया में आप वॉर का माहौल देख रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुल मिलाकर यदि मैं ये सब मिलाता हूं, ये सब बड़े फैक्टर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे फैक्टर्स नहीं है, इससे बाजारों पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो हमारा प्रदर्शन भारत का अच्छा रहा है। पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, तो ये आईटी क्षेत्र की कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वहां पर हमने बहुत भारी गिरावट देखी थी पिछले दिनों, कुछ अब हमने पिछले यदि एक या दो सप्ताह वो देखे वहां बाइंग हुई है और 15 से 20% उछाल भी आया है बड़ी आईटी कंपनीज के शेयर्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से काफी बड़े पैमाने पर उन्होंने पैसा निकाला था, हम वहां पर थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। वहां पर एफआईआई के द्वारा बाइंग द्वारा से शुरू हुई है, अभी लार्ज कैप्चर कर रहे हैं, लार्जली आईटी स्टॉक्स में देखा है थोड़ी बाइंग। तो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स हमारे सामने हैं और कुल मिलाकर जो असर आ रहा है सामने वो अच्छा आ रहा है। लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, मिड कैप्स में जैसे आपने पहले कहा कि थोड़ा वहां पर प्रॉफिट

0: है इनमें कस्टम शुल्क अधिक होना, साथ ही इस अवधि में सामान्यतः सोने की खरीदारी कम किया जाना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोने की खरीदारी घटाने की भी अपील की थी। कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे सोने की मांग घटना है?
1: मतलब जी देखिए, भारत करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए का सोना हम हर साल इम्पोर्ट करते हैं, तो यदि वहां पर हम 10 से 15% इम्पोर्ट कम कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट करी, मुझे लगता है बहुत बड़ी सेविंग्स होगी हमारे लिए।

विमानी भरी तेली वाला से सुनना चाहते हैं। प्रभुदास कोटेजा, जनसा कोटेजा, आशीष कोटेजा, जंक्शन प्लॉट राजकोट से, और नशा अहमद सिद्दीकी, अहमदीन सिद्दीकी, ईशान अहमद सिद्दीकी, छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं डॉक्टर रवि रोशन, बेगम शबना अनवार, भुवन प्रकाश गौतम, गंजनवारा से, और तेजस एस्काले, लोकेश एस्काले, संतोष एस्काले, महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, और कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज सुनना चाहते हैं। ईशान वारसी, इमरान

रिहान, कास मुकेश कासलीकर, राजेश सोनी, बाबा साहब वडोड़े बचाते हैं महाराष्ट्र से, रेहान मोहम्मद उमर फाजिल और फराज शेख सुनचाते हैं घास बाजार बांद्रा स्टेशन से।

मुश्किल का खेलों में जेवेलियन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और ऋषभवीर सिंह मर्दों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी ताजीम की तोहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी है। लोकसभा ने आज इस बिल को मंजूरी दी। राज्यसभा में यह बिल कल मंजूर हो चुका है। दाखिल उमूर के वजीर मुमलकत नित्यानंद राय ने कौमी ताजीम की तोहीन की रोकथाम के लिए से मुतालिक एक्ट 1971 में मजीद तरमीम के लिए बिल पेश किया। इस कानून की रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज फराहम किए जाने की

जिन लोगों का मुजरिमाना पुलिस मंजर होगा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखिला ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है तो गिरफ्तारियों पर नजरसानी करने और गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करने के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। महकमा ने कहा कि दिल्ली सरकार एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ किसी तरह की मजीद मनफी कार्रवाई करने की तजवीज नहीं देती और यह मामला इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर खत्म समझा जाना चाहिए। इसने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज शाम 6 बजे तक दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के सिलसिले में मजमूई तौर पर 13 मामला दर्ज किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसलह अफवाज की जानिब से वहशियाना हमले के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने मुसलह अफवाज की फायरिंग में पीर के रोज 40 से ज्यादा सिविलियन हलाक हुए थे। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी GACC

खत्मबाजी था, जबकि बासिल भी इस सीजन के बेहतरीन रिकॉर्ड 10.83 सेकंड में अपना गेम पूरा करके दूसरे मुकाम पर पहुंचे। इंग्लैंड के केविन ने 10.85 सेकंड में अपना खेल मुकम्मल करके कांसे का तमगा जीता। सोने के 3, चांदी के 9 और कांसे के 3 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 15 तमगे हासिल करके भारत दर्ज मुश्तरका खेलों की तमगों की फहरिस्त में 8वीं मुकाम पर है।

सामने भी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा की आवाज में नगमा, जिसकी तरफ बनाई थी रोशन ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश तलत महमूद की आवाज में और लता मंगेशकर भी इनके साथ है। उसको सुनना चाहे विनोद वारस उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिलो परवेज बेगम नवनाज और नवाजिश शेख ने, और सुनना चाहते हैं संजय डींगिया रमनिया अपार डींगिया उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद अली अंसारी, अजीब अंसारी, मोहम्मद सारिक अंसारी अस्तपुरा जिला मऊ से सुनना चाहते हैं, बलजिंदर कौर धीमान रवनीत निशू नामदेव नगर मुक्सर पंजाब से सुनना चाहते हैं बाबू सिंह धीमान के साथ, नवी हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी और अनम अशफ अब्बासी एटा से सुनना चाहते हैं, और मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार सुनने के ख्वाहिशमंद हैं खंडवा से, सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अमोल मानकर और शोभाताई मानकर, और सुनने चाहते हैं दिवाली श्लोक कुमार सावर शहर से राजस्थान।

श्रोता ईमानकर और सुनना चाहते हैं दिवाली श्लोक कुमार सागर शहर से राजस्थान राजकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं और फजल के पंजाब से भूषण खेरा विशाल खेरा विशु खेरा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान आसिफ अली खान बागपत से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। नवाज शेर रमनाथ सुनना चाहते हैं और गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी कलवती सोनी सुनना चाहते हैं। कांला बंदकर से जगदीश जौहरी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं सुरेंद्र संधु अनिता संधु नितेश संधु नवाज शहर से और नीलम बत्ता निहारिका वंशु बत्ता हार्दिक बत्ता पटियाला से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कलवाई नगर सिटपुरा टाउन से जुबैर अली खान सबिया जुबैर और अंजुमन खान।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामील इरशाद के तहत फिल्मी नगमे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय सहाय। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मनोज।

0: और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाकर अपने बाहरी व्यापार को लचीला बनाए रखा है और 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान हमने रिकॉर्ड निर्यात किया जो 863.1 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम कैसे अपने निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार को निरंतर बढ़ाए रख सकते हैं। इस विषय पर हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है जाने माने विशेषज्ञ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय जी को। डॉक्टर सहाय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम यही समझना चाहेंगे कि हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें जगह जगह मार्ग रुक रहे हैं, एक और दूसरी ओर ऊर्जा का जो संकट है उससे निकलने के समाधान ढूंढने जा रहे हैं, जगह जगह रूट्स बंद हो जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए कैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं?
1: जैसा आपने बताया

0: कंट्री जो है जो लो कॉस्ट इकोनॉमी है वो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रतिस्पर्धा में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट का जो फोकस था वो पहले भी कुछ सालों में हमेशा यूरोप और यूएस के ऊपर रहा है। यूएस अभी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मार्केट है, 18% अपने एक्सपोर्ट का यूएस को भेजते हैं, लेकिन ईयू और की जगह हमारे आसियान कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, अफ्रीका है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, ये हमारे लिए मार्केट बहुत बड़े होके आए हुए हैं और इन मार्केट में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इसी चीज जो बहुत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं उसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आया है। जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई है, चाहे पीएलआई स्कीम की बात करें या और हम प्लग इन प्ले की जो स्कीम्स इंडस्ट्रियल पार्क में आ रही, वो भी इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने में बहुत मददगार होंगी, कि क्योंकि जो कंपनीज हैं वो इंडिया को अपना बेस बना रही है और इंडियन कंपनी भी अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है।
1: पर हम ये समझना चाहेंगे, आपने चर्चा की बाजारों का विविधीकरण हो रहा है, साथ ही निर्यात के जो नए ठिकाने हैं वो बन रहे हैं।

0: आ रही है।
1: इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका स्मार्टफोन है। जब देखिए अगर इंडिया के 2015-16 की डाटा देखिए तो हम करीब करीब जो हमारा 24 से 25 बिलियन डॉलर इम्पोर्ट रहता था स्मार्टफोन और मोबाइल फोन का, आज के डेट में हम नेट एक्सपोर्टर मोबाइल सेक्टर में आ गए हैं। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया को बेस बना दिया और इंडिया का जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया के ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इनफैक्ट कोई बात कर रहा था मैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल है, वो जिसका जो उनका एक्सपोर्ट का प्लान है तो उसके प्लान के लिए शायद जो साउथ के जितने भी एयरपोर्ट है, चेन्नई की बात करें, बैंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो जो कैपेसिटी है वो भी उनको ही नहीं डील कर पाएगी और देयर आर नंबर ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स आल्सो। ऐसे अगर हम बात करें टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जो ग्लोबल कंपनीज है वो इंडिया से इंक्रीजिंगली प्रोक्योरमेंट कर रही है और एक तरह का जो सप्लाई चेन उनको चाहिए वो इंडिया में एस्टैब्लिश होगी।

0: फॉर सर्टिफिकेशन टेस्टिंग रिम्बर्स हो रही है 50 लाख की सीलिंग से। तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया हुआ है जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर हैं, जो मझोले एक्सपोर्टर हैं, उनको इस सपोर्ट को लेना चाहिए और नए तरह के जो भी सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उससे अपने को इक्विप करना चाहिए।
1: जो छोटे पीले निर्यातक हैं जिनका कारोबार अपेक्षाकृत छोटा है, वह कैसे इस प्रमाणन को प्राप्त कर सकते हैं और पूरा लाभ अपने उत्पाद का ले सकते हैं?
0: देखिए, छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मैं फल का एक एक्सपोर्ट करता हूँ यूएस में, तो उसके लिए मेरे को एक FDA का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक तरह से उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए सर्टिफिकेशन की कॉस्ट 20 लाख रुपए है और मैं एक लघु उद्योग का एक एक्सपोर्टर हूँ, मेरे लिए वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट हमें 95% जो 20 लाख का है वो वापस करती है। मतलब हमारे पास 19 लाख रुपए, 20 लाख आपने खर्च किए, 19 लाख रुपए तो सरकार आपको वापस दे रही है। सरकार का पूरा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्टिफिकेट

0: मर्दों के पैरा 100 मीटर T47 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने के लिए दलीप बहादुर गोविंद को मुबारकबाद दी है। खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाओं समेत शहरियों के मफादात के तहफ़ुज़ के लिए मुत्तहिद निज़ाम कायम किए जाने पर जोर दिया। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया के तनाजे के फौरी हल की उम्मीदें बांध पड़ गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पुरमन मुजाहरीन पर पाकिस्तानी मुसल्लाफात की जानिब से वैश्याना हमले के बाद एहतियात का सिलसिला जारी है। दौलत मुश्तरक खेले में जेवलियन थ्रो फेंकने वाले नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह मर्दों के फाइनल में पहुंच गए हैं। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी पर मबनी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं पंडित उमा शंकर।

से मिसाइल के हमले सऊदी अरब के साथ तालमेल से अमेरिका के जरिए इराक में ईरान की मामियत वाले मिलिशिया पर किए गए हमलों के बाद हुए हैं। खबर में है कि हमलों में कम से कम 20 फाइटर्स और 6 ईरानी फौजी मुशीर हलाक हुए हैं। राज्यसभा ने कल पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खास किया और इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इस बिल को बुध को मंजूरी दी थी। दोपहर के खाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो एहलकार अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। इस कानून में कई अहम शिक्षे शामिल है जिनमें खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रूपये

लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने

पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस

கல்யாணா பாண்டே. संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी. लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद

या आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

0: विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आपका प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं प्रोग्राम हमराही में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्ती में जब प्यार की मिठास खुल जाए तो हर मुलाकात यादगार बन जाती है। अपनेपन की यही खुशबू दिलों को हमेशा करीब रखती है।

जब मुलाकातों का मौसम आता है तो हर धड़कन एक नई गजल गुनगुनाने लगती है। प्यार की सबसे सुंदर यादें अक्सर इन्हीं हसीन लम्हों में जन्म लेती हैं।

कभी एक छोटी सी मुलाकात भी ऐसी पहचान बन जाती है जो पूरी जिंदगी दिल के सबसे करीब रहती है। कुछ रिश्ते नाम से

कुछ रातें सिर्फ चांदनी की नहीं, यादों और एहसास की भी होती हैं। ऐसी रातें दिल के सबसे खूबसूरत ख्वाबों का संजो कर रखती हैं।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। छोड़ के जा रहे हो एक बहुत ही प्यार से गीत के साथ, मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए

0: देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन

0: अगला गीत सुनते हैं फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार आरटी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनाड़ी से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, संगीतकार आनंद मिलन, गीतकार समीर। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

फिर 7:30 से 8 बजे तक का समय होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 8 बजे की प्रस्तुति रहेगी समाचार प्रभात की। आठ बजकर 15 मिनट पर मॉर्निंग न्यूज के अंतर्गत आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 8:30 का समय है उर्दू समाचार का। 8:45 पर कार्यक्रम स्वर गंगा में शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं राग मियां की तोड़ी, आवाज रहेगी श्री एमडी साकिब जी की। उसके बाद 9:15 की प्रस्तुति होगी गांधी चर्चा, जिसमें वार्ताकार होंगे श्री रमेश कुमार सिंह जी। 9:30 पर कार्यक्रम मिट्टी दी महक में आप पंजाबी कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। फिर 10:10 की प्रस्तुति रहेगी फिल्म संगीत आपकी पसंद। फिर 11:10 में कार्यक्रम सबरंग और 11:30 पर हम लाएंगे आपके लिए कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत के सितार का आनंद ले सकते हैं, जिसमें कलाकार होंगे पंडित राजीव वर्मा जी।

दान सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाना साहेब पदे होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्ना तो पंथ नु सोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दान खालसा जी नु बख्शो हे नमानिया दे मां।

पहला नाम मे श्री कायक्रांतिक स्वाह जुग जुग प्रिंटाय ज्ञान विजेता सात जुरा संतो का कर्म गिरथवा त्रेते रथ जते का दूर गिरथवा द्वापर तपे का सत गिरथवा कल युग रथ यज्ञ।

शीश नायक आती है, शीश नायक आती है, जर दे कसुद है जाय महला पहला, पर पसुक संध्या बादम, सिल पूजिस बगल समादम, मुख चूड़ भी भुखन सादम, ते पाल चंगाल मिचारम, गल माला, तिल कलिलाटम, दोय तोती बसर कपाटम, जय जानस

बकरार न खाया सबको अकबर वे प्राणा सुटिया ये फिर पाई है हो नानक तक ना।